आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी न्यू ओला किटले ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

तो मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और इस एपिसोड में कुछ ऐसे गाने आप तक पहुँचेंगे जो ऐसे बादल हैं, सिर्फ गरजते नहीं साथ बरसते भी हैं। पहला गाना ज़रा ब्लैक एंड वाइट है और इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले राज कपूर साहब ने नरगिस जी के साथ मिलकर रिहर्सल की, डांस करके दिखाया था मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी को कि भाई इस तरह का रोमांस है, ये आना चाहिए गाने में, नहीं आया तो फिर बात नहीं बनेगी। और उस डांस रिहर्सल के बाद राज साहब और नरगिस जी को उस रोमांस में देखने के बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। गाना कौन सा है साहब, आप समझ गए, श्री 420 का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने और उसके बाद एक बेहतरीन किस्सा आपको सुनाऊंगा। कि बरसात वाला ये गाना था, हीरो तो खूब नाचा पर हीरोइन फूट फूट के रो, कौन सा था वो गाना, कौन था ये हीरो हीरोइन बताता हूँ। लेकिन उससे पहले प्यार हुआ, इकरार हुआ

0: गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, उस पर बरसाती गाने सुन रहे हैं और इन गानों के जो जज्बात हैं उनमें हम भीग रहे हैं। मामला बड़ा रोमांटिक भी है। अभी जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पर बरसात वाला ही गाना शूट किया जा रहा था। हीरो तो खूब नाचा, खूब खुश हुआ, पर हीरोइन फूट फूट के रोई। बात दरअसल यूं रही कि ये वो हीरोइन रही जिन्होंने शुरुआत की थी आर्ट सिनेमा से, और मन करता था कि हमेशा सीरियस तरीके का ही सिनेमा किया जाए, लेकिन जब कमर्शियल सिनेमा में आई और ये बारिश वाला गाना इनके सामने रखा गया तो पहले तो इन्होंने ज़रा ना नुकुर की, पर हीरो ने समझा लिया कि नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हीरो भी बहुत बड़ा, जिसे ना करना बड़ा कठिन था, तो उस हीरो के साथ इस गाने की शूटिंग तो करी। शूटिंग के बाद ये रोने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों इस तरह का कमर्शियल सिनेमा कर रही हूँ, क्यों बारिश में भीगती भी नज़र आ रही। फिर हीरो इनके पास गया और कहने लगा कि ये एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ये हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे हैं और इसमें कोई भी मूव ऐसी नहीं है जिससे लगे कि मामला बदसलूकी का है या वल्गर है। तब जाके हीरोइन की जान में जान, और जब इस गाने को पब्लिक ने देखा तो सभी ने सराहा और कहा कमाल का काम किया। हीरो अमिताभ बच्चन, हीरोइन स्मिता पाटिल। गाना सुन लीजिए आप, समझ जाएंगे। फिल्म का नाम बता दूँ आपको, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इस गाने को हम सुनेंगे और फिर बताऊँगा कि कैसे मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया था और फिर वो गाना बनाया कि राज कपूर भीगे भीगे भागते रहे नाचते रहे। बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आज रबड़ जाए।
1: आज रबड़

0: देखिए हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया, ऐसी बात कह दी जिसके बाद राज साहब जो हैं वो बारिश में भीगते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। क्या मामला है जरा बयां करता हूँ। देखिए हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब के बड़े भाई ने इनसे कहा कि भाई तुम भी कोई फिल्म में बनाओ, क्या कर रहे हो, कब तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहोगे। मनमोहन देसाई साहब ने कह दिया कि भाई साहब आप राज कपूर और नूतन इन दोनों को ले आओ, इन दोनों के साथ ही फिल्म बनाओ।
1: अच्छा चलो बात करके आते हैं।
0: भाई साहब और मनमोहन देसाई पहुंचे, राज साहब से बात की। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो फिल्म में काम करने में बुराई नहीं है, पर तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, इसने काम ही क्या किया, 20-22 साल इसकी उम्र है, ये क्या फिल्म बनाएगा। तो देसाई बंधुओं ने कहा कि राज साहब जब आपने पहली फिल्म बनाई थी तब आपकी क्या उम्र थी। तो राज कपूर सुनकर हैरान रह गए। हाँ मैं भी 20-22 साल का ही था, मैं मतलब कहते जब आप बना सकते हैं तो एक नौजवान की मदद नहीं करेंगे, आप एक गाना तो शूट करके देखिए, इस गाने में अगर आपको मजा ना आए तो फिर आप फिल्म से बाहर चले जाइएगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। राज कपूर तैयार हुए, गाना शूट किया गया और फिर ऐसा डम डम डिगा डिगा हुआ कि राज कपूर साहब ने कहा कि नहीं फिल्म में तो काम करूंगा। और उसके बाद मनमोहन देसाई ने भी पलट के नहीं देखा, अपने काम से ही राज कपूर का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम छलिया। ये बात तो आप समझ गए ना। सुनते हैं राज साहब की इस मस्ती को। कल्याण जी आनंद जी की ये धुन है, मनमोहन देसाई साहब की पहली पिक्चर का ये गाना कमाल का है। सुनेंगे, थोड़ा सा भीगेंगे जज्बातों में,

साहब गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बेहतरीन गाने और कुछ बड़े ही अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब अमृता सिंह, जबरदस्त अभिनेत्री अमृता सिंह, लेजेंडरी दिलीप कुमार के रिश्ते में आती, ये बात बड़ी अजब सी लगती है ना। देखिए क्या हुआ, अमृता सिंह जी की जो नानी रही जरीना, वो गुजरे वक्त की जबरदस्त अभिनेत्री बेगम पारा की बहन रही। बेगम पारा कौन हुई, ये इन्होंने शादी की नासिर खान से, नासिर खान दिलीप कुमार के छोटे भाई, और ये बेगम पारा से जुड़ी जाके अमृता सिंह जी, और इस तरह से इनडायरेक्टली ही सही ये दिलीप कुमार साहब के रिश्ते में आ गए। और इनके कज़न हैं कौन, अयूब खान, अयूब खान जिन्होंने फिल्मों में भी नाम कमाया और टेलीविज़न पे भी बड़ा नाम कमाया। अब बताओ फिल्म इंडस्ट्री में कौन किससे दूर रहा है, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कोने में सब रिश्तेदारी के बंधनों में बंध ही जाते हैं। ये बड़ी अनोखी सी बात बड़ी ढूंढ के निकाली है, अभी आप तक पहुंचाई है। और अभी अमृता सिंह का जिक्र हुआ है तो एक गाना मैं सुनाता हूँ जो इनकी पहली पिक्चर से है और कमाल का है, बादल गरज रहा है। अब देखते हैं कितना डर लगता है इसमें, सुनते हैं इस गाने को और फिर बताऊंगा कि कैसे एक हंसती गुनगुनाती लड़की रोने भी लगी और उसे जीवन साथी भी उन आंसुओं और उस हंसी के बीच मिल गया। लेकिन अभी बेताब से ये गाना।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी जरा ले चलता हूं आपको उस वक्त में जहां पर एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री जो बिना किसी बात के भी हंस सकती थी, बड़े से बड़ा एक्टर उसके सामने आ जाए और ये हंसने लगती थी, और शूटिंग के बीच में हंसती थी, सब परेशान होते थे और लगता था कि इसे साथी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, पर हाँ इसकी ज़िंदगी में प्यार है। एक बड़ा ही चुलबुला लड़का जो बड़ा अच्छा गाता भी था और अभिनेता भी था। अब इन दोनों ने शादी का फैसला किया, पर ये लड़की बहुत बीमार रहती थी और इसके वालिद ने कहा कि भाई पहले ज़रा लंदन ले जाया जाए इसे, इसका इलाज कराया जाए, उसके बाद तुम दोनों शादी करना, अभी मत शादी करो। लेकिन हीरो जो था वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, उसने कहा नहीं साहब, शादी का फैसला किया है तो पहले तो शादी होगी, उसके बाद इलाज किया जाए। इस तरह से आंसुओं के बीच इस हीरोइन को खुशी मिली, शादी हो गई, लंदन गए भी, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ज़्यादा ये जिएगी नहीं, पर जो भी पल हैं इसे खुश रखने की ज़रूरत है। और कुछ वैसा हुआ भी तो बाद में ज़रा बात बिगड़ी थी, पर सवाल ये है कि ये हीरोइन कौन और हीरो कौन, समझ तो गए हैं आप, हीरोइन मधुबाला और हीरो किशोर कुमार। है ये बड़ी अनोखी कहानी, ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी एक लड़की भीगी भागी सी है, मामला ज़रा रोमांटिक सा है और इस रोमांस के नाम पर ही किशोरदा और मधुबाला जी को हम याद करते हैं। चलती का नाम गाड़ी से।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओ, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी।

0: तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात, यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के

0: पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एमयू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती, बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50

0: कुल्हाड़ियाँ, 40 कैंचियाँ, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, आप पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो

0: अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
1: लीजिए ये आपका हुआ।
0: इसकी कीमत?
1: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
0: धन्यवाद।
2: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
3: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
4: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: बालवाणी, बाळकोनी वातो बाळकोनी विगतु, बाळकोनी लगतु मार्गदर्शन, होय वात बाळकोनी केळवानी के बाळको सुधी पहुंचवानी, मारू तमारू अने आपणा सौनु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पालनपुर हवे एक कदम आगळ, समग्र देशनी एकमात्र चिल्ड्रन्स रिसर्च यूनिवर्सिटी गांधीनगर अने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पालनपुर द्वारा भारतना भावि घडवैयाओना घडतर माटे एक आगवी पहल। बालवाणी, वार्ताओ, गीतो, जरूरी माहिती अने मार्गदर्शन, आ बधुज भारतना भविष्य माटे खास तज्ञो, बाल साहित्यकारो अने सर्जको साथे बाळक माटे सीधो संवाद, तो सांभळवानु भूलता नहीं। बालवाणी रेडियो पालनपुर पर मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर।

पीली पीली मोटर तो अटकी गई, बंद पड़ी गई। बोलो हवे गाड़ी बंद पड़े तो शू करवू? क्यारेक तमारा घरे

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर, उस नजर

वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत, जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: કરી શકો છો 9596 88 પર. અમારી સાથે જોડાઓ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર સાથે જોડાઓ અને તમારા પ્રોડક્ટ ની માહિતી દૂર દૂર સુધી પહોંચાડો.
1: મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 મેગાહર્ટ્ઝ.
2: मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और इस एपिसोड में कुछ ऐसे गाने आप तक पहुंचेंगे जो ऐसे बादल हैं, सिर्फ गरजते नहीं साहब, बरसते भी हैं. पहला गाना जरा ब्लैक एंड वाइट है और इस गाने के रिकॉर्डिंग से पहले राज कपूर साहब ने नरगिस जी के साथ मिलकर रिहर्सल की, डांस करके दिखाया था मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी को कि भाई इस तरह का रोमांस है, ये आना चाहिए गाने में. नहीं आया तो फिर बात नहीं बनेगी. और उस डांस रिहर्सल के बाद राज साहब और नरगिस जी को उस रोमांस में देखने के बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई. गाना कौन सा है साहब, आप समझ गए, श्री 420 का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने और उसके बाद एक बेहतरीन किस्सा आपको सुनाऊंगा. ये बरसात वाला ये गाना था, हीरो तो खूब नाचा पर हीरोइन फूट फूट के रो. कौन सा था वो गाना, कौन थे ये हीरो हीरोइन, बताता हूँ. लेकिन उससे पहले प्यार हुआ, इकरार हुआ,

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, उस पर बरसाती गाने सुन रहे हैं और इन गानों के जो जज्बात हैं उनमें हम भीग रहे हैं। मामला बड़ा रोमांटिक भी है। अभी जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पर बरसात वाला ही गाना शूट किया जा रहा था। हीरो तो खूब नाचा, खूब खुश हुआ, पर हीरोइन फूट फूट के रोई। बात दरअसल यूं रही कि ये वो हीरोइन रही जिन्होंने शुरुआत की थी आर्ट सिनेमा से, और मन करता था कि हमेशा सीरियस तरीके का ही सिनेमा किया जाए, लेकिन जब कमर्शियल सिनेमा में आई और ये बारिश वाला गाना इनके सामने रखा गया तो पहले तो इन्होंने ज़रा ना नुकुर की, पर हीरो ने समझा लिया कि नहीं नहीं करो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हीरो भी बहुत बड़ा, जिसे ना करना बड़ा कठिन था, तो उस हीरो के साथ इस गाने की शूटिंग तो करी। शूटिंग के बाद ये रोने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों इस तरह का कमर्शियल सिनेमा कर रही हूँ, क्यों बारिश में भीगती भी नज़र आ रही। फिर हीरो इनके पास गया और कहने लगा कि ये एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है, ये हीरो और हीरोइन रोमांस कर रहे हैं और इसमें कोई भी मूव ऐसी नहीं है जिससे लगे

0: मामला बदसलूकी का है या वल्गर है, तब जाके हीरोइन की जान में जान। और जब इस गाने को पब्लिक ने देखा तो सभी ने सराहा और कहा कमाल का काम किया। हीरो अमिताभ बच्चन, हीरोइन स्मिता पाटिल। गाना सुन लीजिए आप, समझ जाएंगे। फिल्म का नाम बता दूँ आपको, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इस गाने को हम सुनेंगे और फिर बताऊंगा कि कैसे मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया था और फिर वो गाना बनाया कि राज कपूर भीगे भीगे भागते रहे नाचते रहे। बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आज रबड़ जाए।
1: आज रबड़

देखे हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब ने राज कपूर को चैलेंज कर दिया। ऐसी बात कह दी जिसके बाद राज साहब जो हैं वो बारिश में भीगते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। क्या मामला है जरा बयां करता हूँ। देखिए हुआ यूं कि मनमोहन देसाई साहब के बड़े भाई ने इनसे कहा कि भाई तुम भी कोई फिल्म में बनाओ, क्या कर रहे हो, कब तक बतौर असिस्टेंट काम करते रहोगे। मनमोहन देसाई साहब ने कह दिया कि भाई साहब आप राज कपूर

0: नूतन, इन दोनों को ले आओ, इन दोनों के साथ ही फिल्म बनाओ।
1: अच्छा चलो बात करके आते हैं।
0: भाई साहब और मनमोहन देसाई पहुंचे, राज साहब से बात की। राज कपूर साहब ने कहा कि देखो फिल्म में काम करने में बुराई नहीं है, पर तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, इसने काम ही क्या किया, 20-22 साल इसकी उम्र है, ये क्या फिल्म बनाए। तो देसाई बंधुओं ने कहा कि राज साहब जब आपने पहली फिल्म बनाई थी तब आपकी क्या उम्र थी। तो राज कपूर सुनकर हैरान रह गए, हाँ मैं भी 20-22 साल का ही था, मैं मतलब जब आप बना सकते हैं तो एक नौजवान की मदद नहीं करेंगे, आप एक गाना तो शूट करके देखिए, इस गाने में अगर आपको मजा ना आए तो फिर आप फिल्म से बाहर चले जाइएगा, मैं बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा। राज कपूर तैयार हुए, गाना शूट किया गया और फिर ऐसा डम डम डिगा डिगा हुआ कि राज कपूर साहब ने कहा कि नहीं फिल्म में तो काम करूंगा। और उसके बाद मनमोहन देसाई ने भी पलट के नहीं देखा, अपने काम से ही राज कपूर का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम छलिया। ये बात तो आप समझ गए ना। सुनते हैं राज साहब की इस मस्ती को, कल्याण जी आनंद जी की ये धुन है, मनमोहन देसाई साहब की पहली पिक्चर का ये गाना कमाल का है, सुनेंगे थोड़ा सा भीगेंगे जज्बातों में,

सब गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बेहतरीन गाने और कुछ बड़े ही अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूं। देखिए क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। अब अमृता सिंह, जबरदस्त अभिनेत्री अमृता सिंह, लेजेंडरी दिलीप कुमार के रिश्ते में आती, ये बात बड़ी अजब सी लगती है ना। देखिए क्या हुआ, अमृता सिंह जी की जो नानी रही जरीना, वो गुजरे वक्त की जबरदस्त अभिनेत्री बेगम पारा की बहन रही। बेगम पारा कौन हुई, ये इन्होंने शादी की नासिर खान से, नासिर खान दिलीप कुमार के छोटे भाई, और ये बेगम पारा से जुड़ी जाके अमृता सिंह जी, और इस तरह से इनडायरेक्टली ही सही ये दिलीप कुमार साहब के रिश्ते में आ गए। और इनके कज़न हैं कौन, अयूब खान, अयूब खान जिन्होंने फिल्मों में भी नाम कमाया और टेलीविज़न पे भी बड़ा नाम कमाया। अब बताओ फिल्म इंडस्ट्री में कौन किससे दूर रहा है, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी कोने में सब रिश्तेदारी के बंधनों में बंध ही जाते हैं। ये बड़ी अनोखी सी बात बड़ी ढूंढ के निकाली है, अभी आप तक पहुँचाई है। और अभी अमृता सिंह का जिक्र हुआ है तो एक गाना मैं सुनाता हूँ जो इनकी पहली पिक्चर से है और कमाल का है, बादल गरज रहा है। अब देखते हैं कितना डर लगता है इसमें, सुनते हैं इस गाने को और फिर बताऊँगा कि कैसे एक हंसती गुनगुनाती लड़की रोने भी लगी और उसे जीवन साथी भी उन आंसुओं और उस हंसी के बीच मिल गया। लेकिन अभी बेताब से ये गाना।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी जरा ले चलता हूं आपको उस वक्त में जहां पर एक बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री जो बिना किसी बात के भी हंस सकती थी, बड़े से बड़ा एक्टर उसके सामने आ जाए और ये हंसने लगती थी, और शूटिंग के बीच में हंसती थी, सब परेशान होते थे और लगता था कि इसे साथी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, पर हाँ, इसकी जिंदगी में प्यार आया। एक बड़ा ही चुलबुला लड़का जो बड़ा अच्छा गाता भी था और अभिनेता भी था। अब इन दोनों ने शादी का फैसला किया, पर ये लड़की बहुत बीमार रहती थी और इसके वालिद ने कहा कि भाई पहले ज़रा लंदन ले जाया जाए इसे, इसका इलाज कराया जाए, उसके बाद तुम दोनों शादी करना, अभी मत शादी करना। लेकिन हीरो जो था वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, उसने कहा नहीं साहब, शादी का फैसला किया है तो पहले तो शादी होगी, उसके बाद इलाज किया जाए। इस तरह से आंसुओं के बीच इस हीरोइन को खुशी मिली, शादी हो गई, लंदन गई भी, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि ज़्यादा ये जिएगी नहीं, और जो भी पल हैं इसे खुश रखने की ज़रूरत है। और कुछ वैसा हुआ भी तो बाद में ज़रा बात बिगड़ी थी, पर सवाल ये है ये हीरोइन कौन और हीरो कौन, समझ तो गए हैं आप, हीरोइन मधुबाला और हीरो किशोर कुमार। है ये बड़ी अनोखी कहानी, ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी एक लड़की भीगी भागी सी है, मामला ज़रा रोमांटिक सा है, और इस रोमांस के नाम पर ही किशोरदा और मधुबाला जी को हम याद करते हैं। चलती का नाम गाड़ी से।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: इस लोकगीत विच एक पंजाबी मुटियार अपने सौरे घर दीआं गल्लां दसदी है।

पाए। आराधना विनाशिनी जो है आदि निरंजन राय। आदि निरंजन अकल स्वरूप राम जी लिए खेलन रूप। पृथ्वी की पावन भई मनशाय, सुभट बन पोढ़े जलमाय। जय जय वैकुंठ राय। जाका प्रकाश ने कारणे हूँ पार्वती मानो चेहरो जोई शकतो न हतो। जो जोई शकतो हो तो जरूर कही शकत के वर्षों पहला कपाड़ में लाल चांदलो करी लाल वस्त्रों में सोपती घरेणा थी लदाई ने तेना बिहारी ने गोद में लई सामी परसाड़ में बैसी हालड़ू गाती हती तेज स्त्री आजे आ वृद्ध देह में जीवन थी गई है। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर ध्रुव भट्ट लिखित तत्वमसी। क्या जता नहीं, जोड़ेला रहो मारी साथ।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।